ये चैनल है रागम डीटेच, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, संत कबीर की इस रचना का आनंद लीजिए अनुरिता राय के स्वर में।

हर दिन हर पल भारतीय संगीत का चैनल रागम डीटीएच। बेला सावेर के स्वर में सुनते हैं दरिया साहब की भक्ति रचना आदि अंत मेरा है राम।

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत, ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत

0: अभी हम आपको राग ललित पर ख्याल सुनवाएंगे। कलाकार है निहार रंजन बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिबीर राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग ललित पर ख्याल। कलाकार है निहार रंजन बंदोपाध्याय।
1: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Lalit. Our artist is Nihar Ranjan Bondopadhyay. Accompanying him on the tabla is Timir Roy Chaudhuri and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khayal in the rag Lalit, our artist Nihar Ranjan Bondopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे निहार रंजन बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिबीर राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग परमेश्वरी पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सलील महालनोबिस। तो लीजिए प्रस्तुत है राग परमेश्वरी पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार।
1: You will listen on the harmonium voice Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime into music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to a guitar recital in the rag Parameshwari. Our artist is Swapan Majumdar. Accompanying our artist on the tabla is Sholil Mahalanobish. Listen now to the guitar in the rag Parameshwari. Our artist, Swapan Majumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी पर गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सपन मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सलील महालनोबिस। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a guitar recital in the Rag Parameshwari. Our artist was Swapan Majumdar. Accompanying our artist on the tabla was Sholil Mahalanobis. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

मृदंगम बै धारासुरम एम गणपति ऑन द गांजिरा बै तिरुकड़यूर दक्षिणामूर्ति ऑन द घटम बै के नागराजराव एंड ऑन द मोर्सिंग बै टी एस राजारामन He begins his Carnatic classical violin concert with a composition of Shuddhananda Bharathi, Arul Purivai, in the rag Hamsadhwani, set to Adithal.

0: This is Rag 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में. आप सभी का स्वागत. सुनते हैं शास्त्रीय गायन. प्रारंभ में सुनते हैं विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार. विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सब बहार आए, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बसंत की धूम मची. सात संगत सारंगी ए.के. कुंटे, तबला डी.के. जोशी. तो आइए सुनते हैं राग बहार. कलाकार विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव.

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत आग बहार। आपके साथ सारंगी पर संगति कर रहे थे ए.के. कुंटे और तबले पर संगति कर रहे थे डी.के. जोशी। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। विलंबित त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल हैं आज पलन आए।

सरदारीबाई रद्दगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। विलंबित तीन ताल में बद्ध रचना के बोल है जो तेरी रजा जो चाहे। साथ संगत हारमोनियम अप्पा जलगांवकर, तबला शेषगिरी हंगल। तो आइए सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे अप्पा जलगांवकर, तबले पर थे शेषगिरी हंगल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैराग. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है.

0: बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं नैना तिहारे मन भावे। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय उस्ताद गुलाम सादिक खान। ही बिगिंस द रिसाइटल विद अ रेंडिशन इन राग बैरागी। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल। द वर्ड्स आर काज मुरे बन आवे। द द्रुत इज सेट टू तीन ताल। द वर्ड्स आर नैना तिहारे मन भावे। He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग मेघ। मध्य लय झपताल में निबद्ध है, बोल हैं गर्जे घटा घन और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं कासे न कहिए सजनी। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: You were listening to a rendition in Raag Bairagi by Ustad Ghulam Sadiq Khan. He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed. He now presents Raag Megh. The medium tempo or madlay is set to Jhaptal. The words are Garje Ghata Ghan. And the fast tempo or Drutlay is set to Teental. The words are Kase Na Kahiye Sajni. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ परफॉर्मेंस इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय नवाब अली खां एंड ऑन द हारमोनियम बाय सज्जाद अहमद। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है पंडित सुनील कांत गुप्ता का बजाया बांसुरी पर राग अहीर भैरव। मध्यलय की यह रचना एक ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री पंकज चौधरी। दिस इज रागम इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। वी आर प्रेजेंटिंग फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित सुनील कांत गुप्ता। फर्स्ट ही प्रेजेंटिंग राग अहीर भैरव। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री पंकज चौधरी।
2: आरंभ में बांसुरी पर प्रस्तुत है राग अहीर भैरव, जिसमें पहले आलाप उसके बाद मध्यलय एक ताल में गत प्रस्तुत करूंगा। लीजिए, प्रस्तुत है।

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित सुनील कांत गुप्ता का बजाया बांसुरी पर राग अहिर भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया बांसुरी पर राग कालिंगड़ा। यह बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री पंकज चौधरी। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग फ्लूट रिसाइटल बाई पंडित सुनील कांत गुप्ता ऑन राग अहिर भैरव। नाउ ही इज प्रेजेंटिंग राग कालिंगड़ा द कम्पोजिशन सेट इन तीन ताल। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री पंकज चौधरी।
1: अब मैं प्रस्तुत करूंगा राग कालिंगड़ा में एक गत। यह रचना मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है। लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर राग कलिंगड़ा। वादक कलाकार थे पंडित सुनील कांत गुप्ता। अब आप सुनिए इन्हीं का बजाया बांसुरी पर राग बिहाग। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री पंकज चौधरी। आफ्टर राग कलिंगड़ा नाउ पंडित सुनील कांत गुप्ता इज प्रेजेंटिंग राग बिहाग अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री पंकज चौधरी।
1: बांसुरी पर प्रस्तुत है राग बिहाग में

0: अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर राग बिहाग। कलाकार थे पंडित सुनील कांत गुप्ता। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया भाटियाली लोक धुन। तबले पर है श्री पंकज चौधरी। आफ्टर राग बिहाग पंडित सुनील कांत गुप्ता इज प्रेजेंटिंग भाटियाली धुन। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री पंकज चौधरी।
1: लीजिए अब सुनिए बांसुरी पर बांग्ला लोक धुन भाटियाली।

0: पंडित सुनील कांत गुप्ता का बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंकज चौधरी।
1: अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर भाटियाली लोकधुन। कलाकार थे पंडित सुनील कांत गुप्ता। ये है रागम 24 घंटे सातुदीन DTH अनवरत भारतीय संगीत। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। यू आर लिसनिंग भाटियाली फोक धुन ऑन फ्लूट बाय पंडित सुनील कांत गुप्ता। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपक ताल में देवेंद्र कांति चक्रवर्ती का तबला वादन. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हिरण मोय मित्रा. रूपक ताल में तबला वादन, कलाकार देवेंद्र कांति चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This evening, we present first a Hindustani instrumental recital. Listen to a tabla recital in Rupak Tal, performed by Devendra Kanti Chakravorty. Accompanying him on the harmonium is Hiranmoy Mitra, tabla solo in Rupak Tal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में देवेंद्र कांति चक्रवर्ती का तबला वादन सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे हिरन मोई मित्रा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए आप सुनते हैं तीन ताल में अशोक कुमार मोइत्रा का तबला वादन। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं प्रशांत सिंघो। तीन ताल में तबला वादन, कलाकार अशोक कुमार मोइत्रा।
1: You were listening to a Hindustani tabla recital in Rupak Tal. The artist was Devendrakanti Chakraborty. Accompanying him on the harmonium was Hiranmoy Mitra. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, now listen to another tabla recital by Ashok Kumar Moitro. Ashok Kumar Moitro performs a teen tal. Accompanying him on the harmonium is Prashant Toshingho. Tabla solo in teen tal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में अशोक कुमार मोइत्रा का तबला वादन सुन रहे थे। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे प्रशांत सिंगो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a Hindustani tabla recital in Teen Taal by Ashok Kumar Moitro. Accompanying him on the harmonium was Prashant Singho. This program was contributed by All India Radio Kolkata for Ragam 24/7, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन राग किरवानी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय. राग किरवानी

0: संतूर पर कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू अ संतूर रिसाइटल इन राग किरवानी। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित तरुण भट्टाचार्य। Accompanying on the tabla, Pandit Shubhankar Bandhopadhyay. Now, listen to a santoor recital in Raag Kirwani by Pandit Tarun Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग किरवानी में पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन सुन रहे थे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ संतूर रिसाइटल इन राग किरवानी बाय पंडित तरुण भट्टाचार्य, एकॉम्पनिंग ऑन द तबला Pandit Shubhankar Bandyopadhyay. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 TH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन. कलाकार हैं कृष्णराम चौधरी. राग है बिलास खानी तोड़ी. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल निबद्ध हैं. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani Shehnai recital by Krishnaram Chaudhary. The rendition commences with the rag Bilas Khani Todi.

आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं कृष्णाराम चौधरी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णाराम चौधरी। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग केदार। मध्य लयगत झपताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। Now the artist renders Rag Kedar।

अभी आप रहे थे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन। कलाकार थे कृष्णराम चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णराम चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: ETH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है ऋषिकेश गांगुटे का गाया राग नटभैरव। विलंबित बंदिश तीन ताल में निभे है, बोल है करम करो तुम मोपे साई, और द्रुत बंदिश तीन ताल पे निबद्ध है जिसके बोल है रब साच तेरा जन्म आधार। सारंग पर आपके साथ संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खान और तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र। तो आइए सुनते हैं राग नटभैरव ऋषिकेश गांगुटे की आवाज में। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुटे। ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग नटभैरव। बोथ द कॉम्पोजिशंस विलंबित अरुत आर सेट इन तीन ताल। अकॉम्पनिंग हिम ऑन सारंगी उस्ताद नसीर हुसैन खां एंड ऑन तबला शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरद भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुडे का गाया राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके सारंगी पे संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खां और तबले पर संगति दे रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। You are listening Raag Nat Bhairav by Rishikesh Gangude. Now, he is presenting Raag Shuddha Kalyan, Vilambit and Drut set in Tintal. Accompanying him on Sarangi, Ustad Nasir Kha and on Tabla, Sheetal Prasad Mishra.

अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुर्डे का गाया राशुद्ध कल्याण। ये है रागम 24 घंटे सातु दिन डीटीएच अनवरत भारती संगीत। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग ऋषिकेश गांगुर्डे ऑन राग शुद्ध कल्याण। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित एल के पंडित का गा राग विभास. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोहन जागो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज मैं घर आए. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present a vocal recital by Pandit L.K. Pandit. He begins his recital with a performance in Rag Vibhas. The Vilambit Khayal is set to Tilwada Tal. The words are Mohan Jagu. The Drut Khayal is set to Teen Tal and the words are Aaj Mure Ghar Aaye. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan.

0: अभी आप पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आप संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं नाम निरंजन। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं तू है निराकार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने।
1: You just heard Raag Vibhas performed by Pandit L.K. Pandit. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan. He now presents a rendition in Raag Shuddha Sarang. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal and the words are Naam Niranjan. The Drut Khayal is set to Teen Taal. The words are Tu Hai Nirakar.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.